पावक अनक लख बरिया अनठोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे।

परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तार जो कल को एक बार दिए हैं ताके काल निकट नहीं आए।

हे शबद धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

हैरान रह गए। सर्दी बलदी इस जेठ दी रुत विच उत्तों सूरज कैर वरता रहा है, अत दी गर्मी और दूजे पासे जालम ने इन्ना कहर कीता है। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह चेहरे ते जरा भी शिकवन नहीं। किसे ने आख्या पातशाह ये जालम इतने तसीये दे रहे ने और आप इतनी शांति नाल सब कुछ

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदे नाल वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। ते ये हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया ऐसी कलगीधर दे हुक्म दी अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकदा है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में दे। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जल्दी ये साहब की बख्शिश है भी जो गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाओ भी ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ए उत्तम है ए प्रमाणिक है ए ना प्रमाणिक है तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए जल्दी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है। इह राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है। आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुणदा नहीं ते मैं समझदा भी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्होंने दिते। नेत्र तां दिते पर साहिबां दी दसे सतगुणा की जोत वेखण वाले नैण नहीं दिते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुन दा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शे पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश सुन लई नहीं दिता। इसलिए सब सिखन को हुक्म है की औते को मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका दी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा भी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख दी आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा लंबेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा किश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

करते हैं। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं फिर ओ परम परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावां। हर का नाम हृदय नित ध्याई सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपां मन करके जपां। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है नाम जपया है और जपणगे हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे न फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम साई दा नाम आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक हैं बिप विचार किछ नाही जल ते उपज तरंग जियो जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है पाणी नूं मंदा है ते की कहिंदा है तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है मैनूं दुख विच रखिया है ए तेरा ही हुक्म है तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनूं अपना नाम बख्शे मैं तेरा सिमरन करां अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करां। और जो परमात्मा दी भक्ति करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रहे, फिर भी उसके हुक्म विच रहे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके ऊपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हन, जो अखर उचारे हन, इना ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वार सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है। तां चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतरजामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती, गरीब निवाज किथे तुरे हो, आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं, किसे जरूरी काम नूं चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए हैं। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरा मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन। बाबा बुढ़ा जी भज के गए लंगर विचों, मात गंगा जी नूं सद्या,
माता जी साहब जी चले हन लाहौर ते सचमुच इस बार जदों जाणगे वापस परत के नहीं आणगे। ऐसा केड़ा जरूरी काम पै गया इस वेले आए। मात गंगा जी ने जदों नेत्र बंद करके ध्यान विच वेख्या तां आप दियां वी भुभां निकलियां। साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज निम्रता दे पुंज कहन लगे, गंगा जी साडे शरीरां दा मेल हुण इत्थे तक ही सी, अगे हुण असी गुरु नानक दी दरगाह विच कठे होवांगे। साध संगत बोलो श्री, साध संगत बोलो श्री। गुरु हरगोबिंद जी जो उस वेले बाल अवस्था विच सन आए पिता दे दर्शन कीते। साहब जी ने सोना हाथ गुरु हरगोबिंद जी दे सिर ते रखिया ते फिर लाहौर वाल चाले पा दिते। नाल तुरी जाउंदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह ते नाल रसना तो ए शब्द उचारी जाउंदे हन की कहंदे हन।

दूरी तक साहब जी नाल गईयां। चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बादशाह जहांगीर दा दीवान हां, पहले तो गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दियो तां मैं सारे सुख तुहानू देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा, संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा पाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है, तले ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नु नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी

ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया ने आख्या रेत तपाओ रेत तपाई पड़ पूंजे नू सदिया जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा साथ संगत बोलो श्री तलो तत्ती तवी अग बल रही है उत्तो गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं साहब जी दे जदों भी बुल फरक दे हैं तो विच्चों एही आवाज आउंदी है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं हाथ जोड़ के बेनती की गरीब निवाज एक ही पाना है साहब जी कहन लगे साई मिया अमीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है तन तप रहा है मन शांत है हरि नाम से अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू साई मिया अमीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी जात दा मुसलमान सी लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मिया अमीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया ता नीव हरमंदर साहब दी मिया मीर पासों रखाई के ए सांझी वालता दा घर है गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है मिया मीर ने बेनती कीती गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे शक्ति नहीं दिखांदे ता मैनू हुक्म करो मैं दिखावां साहब जी कहन लगे मिया मीर करना वड्डी गल नहीं है जरना वड्डी गल है शक्ति होंदिया होया जर लेना ए वड्डी गल है ता उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या हजरत मिया अमीर उपर तक जा उपर देखिया ता 33 करोड़ देवी देवता हाथ बने खड़ोते हैं गरीब निवाज सानू हुक्म कर लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं ते की

सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी उधर सुनैल बिन सुजाए हो मैं दुख है जन्म का।

हे अचरज हैरी मन मूर्ख अजू नह समझत मन मूर्ख अजू नह समझत सिख दे हारो नीत नानक पहुंचल पार परे।

आपके लिए हम धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तू शहन शाहवां दा शहन शाह है तेरे समान संसार विच होर को

पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिस दी मदद कोई नहीं करता उस दी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात संगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर।

मेरी चोली किसे ने नहीं परी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाऊंगी, वो सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के ही जाऊंदा है। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदो अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दियो सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणों विच शीश झुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणों दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी, हिंदू धर्म की रक्षा की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी
ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਸੁਰਵੀਰਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਵਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਵਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰੇ ਨੇ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸੱਵਰ ਖੇਚ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਤੁਝ ਕੋ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਮਸਲਤ ਪਰ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਤੁਝ ਸਾ ਮੁਝੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ

तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले संसार च ऐसा चल जाना एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा कम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है ओनू जाके बेनती करा तू ए कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार भी सी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे दा काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहगुरु नाल पा के वेख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास तो हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यो जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना ये हथ बज गए ये हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तां दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हों के हथा तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मथा टेक देने ए पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हों के मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मथा टेकने मथा टेकने पातशाह इन्हों हथा तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचा भी कुछ नहीं जा मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने ची बड़िया भुला ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्योत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं अर्ज कर रहा हुआ मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराए बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ए वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा ते इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा घबराया हुंदा डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा पसीने पूंजदा सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ

करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसे छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई तिहाइए जीअड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहन शाह तो वड्डा है। शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक।

आज पहर प्रभ त्याए तू गुण गोबिंद नित गाओ। तू ओदे गुण गाउणा शुरू कर, तू अठे पैर ओदे ध्यान च रहना शुरू कर, ओ तेनू अपने ध्यान च रखेगा। तिसकी शरणी परमना जिस जेवड अवर ना कोए, किसे छोटे मोटे दी शरण पैण दी की लोड़ है। तू ओदी शरण पाओ जिदे जिड्डा होर कोई नहीं है, जिदे वर्गी समर्था किसे होर कोल नहीं है। जिस सिमरत सुख होए घणा, जिनू याद करन नाल बहुत ज्यादा सुख दी प्राप्ति हो, वाधू सुख दी प्राप्ति हो। दुख दर्द ना मूले होए, सदा सदा कर चाकरी, तू ओदी सेवा च लग। प्रभ साहिब सच्चा सोए जो सच्चा मालिक है। साध संगत होए निर्मला, सतसंगियां नाल रल के पवित्र होके निर्मल होके, मलीन बुद्धि नू छड़ के दुरमत नू छड़ के गुरमत दा धारनी बन के। कटिए जम की फास, सुख दाता पै भजनो तिस आगे कर अरदास। फिर तेरी अरदास करन दी ढिल है, ते ओदी रहमत करन च कोई ढिल नहीं। किसले ओ रहमत करेगा, मेहर करे जिस मेहरवान, ता कारज आवे रास, जीवन दे सारे कारज सौर दे च

नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छोर प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए। हजूर कहते हैं साध संग

क्या लिखा है, गुरु सूरज के मुआफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

प्रगटिया गुरु नानक आख्या गुरु नानक प्रगटिया राय पोएं दी तलवंडी विच आप नारायण कला तार जग में परवरे।

कोई गल नहीं, परमेश्वर तेनू होर देवेगा, होर देगा ते। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछों देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी

खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते सारी खेती उजाड़ दिती। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया ए तां मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवें क्यों कीता। आख्या मैं तां उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मैं ता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां

गुरु नानक ने गिणिया ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया ओदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सतसंगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के

मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनु हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखिया के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च करदे हन, जो परमेश्वर दे रस्ते ते खर्च करदे हन, गरीब गुरबे दी सेवा करदे हन, उना दे कम्मा विच कदे घाटे नहीं पेंदे। गुरु नानक ने फिर उत्थों मोदी खाना छोड़ दिता।

आवाज आई आ नानक मैं तेनु संसार ते हटियां करन वास्ते ता नहीं भेजिया, मैं ता तेनु संसार विच भेजिया जगत जलंदा जल रहे है उनानु जाके ठारना है तू। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हाथ जोड़ के बेनती की, हे निरंकार मेनू उपदेश दियो मैं संसार नू की जपावा, मैं संसार नू की जपावा। आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नू जपाउना है, जगत जलंदे नू ठारना है ए उपदेश देके। उस जोत विचों आवाज आई,

कोई 400-500 मील होना इथो। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। साथ सिगत बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन। और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते 10 बन जाएगा, 2 जीरो पावेगा 100, 3 पावेगा 1000। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म

उस बच्ची ने सुनिया के इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरना दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर